इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302565 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियों का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS के जरिए हरे हरन की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में खास सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अनूप जलोटा जी की आवाज में।

ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार विशु की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन कुमार विशु की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है।

आवास में ये सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम भजन यात्रा बस सुनते हैं। चले महेंद्र कपूर के बाद बेला जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जाए।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार खास सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते।

सुंदर भजन बड़ा भाई सेन रामबरन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मीका सुखू जी की आवाज में आपकी बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

पास में आज के प्रोग्राम में ये सुंदर भजन अभी आपने सुना। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा श्री कृष्ण भजन अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए। चले हमारे सभी भक्त प्राणियों के लिए ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए सुंदर सा श्री कृष्ण आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है भजन यात्रा का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
2: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je vermaais. €5 per verwijs. €5 per verwijs met gratis downloadlink naar de verwijs. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

सुबह की तरह आज सुबह भी जब भी छुट्टी का दिन है, ट्वेड पिंक्सर राख का दिन है, तो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है, और खासतौर पर आपके लिए, आप जो हमारा प्रोग्राम हमेशा और रोजाना सुनते हैं, तो आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है इस गर्मी सा मौसम में। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हो। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं प्रसून मुखर्जी की आवाज में हेमंत कुमार का एक खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश की गई हेमंत कुमार का खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए द माइटी मुकेश प्रोग्राम में। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226666611। चले आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते ही रहना।
1: मैं जिंदगी

रेडियो SBS की जरिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फरमाइशी इश्तिहारे। जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामकाज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में आपके हर एक कामकाज किया जा रहा है। सभी इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए 0-32-65-65-60 टेलीफोन नंबर होता है। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर

0: आवास में गाना बस पेश की गई
1: है। कहीं देखा है पाप में जादू जो पर देखा है।
0: सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl। श्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना।

man with the Every Queen voice, Kishore Kumar. और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने।

और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में एक और काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में

0: रफी साहब की आवाज में बस पीस की गई
1: सामने।
0: चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा लता मंगेशकर और फिल्म का नाम मैं

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कमल बारूद प्रोग्राम में फिल्म का नाम मन मौजी।

नवज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम मन मौजी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आवारा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गाना बस प्रोग्राम में अगली बार पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम है प्यार किए जा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म प्यार किए जा, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है किसने पुकारा मुझे।

मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, फिल्म का नाम प्यार किएगा। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर और आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे

यहाँ रेडियो SBS के जरिए किशोर एन हर्षा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। असर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में

एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाता रहे मेरा दिल गाना जो पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में आज की ये प्रोग्राम में जो आप सभी ने सुना रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है सभी इन्फॉर्मेशन के लिए सभी कामों काज के लिए 03-265-65-60 इसी तार की नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio sbs.nl की जरिए।

और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म यादों की बारा। खूबसूरत नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

0: रेडियो SBS की सर ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। कल मंगलवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।
1: के आ गई रुत।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं

अंदाज फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24x7 होता है उस पर आप तार कीजिए और सभी इंफॉर्मेशन लीजिए 03-265-65-60 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गए है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण और साथ

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये

धना सरगम और सुरेश वदकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

चलिए गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों के आवाज में द फिल्म नील एंड निकी। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

इस भी इसकी जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2262-66-11।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

राम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

जो पेश की गई साउथ खान और प्रभा की आवाज में है, तो फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कसम से कसम से।

खयामत से खयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा कुमार सानू।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी अब की बार प्रोग्राम में होगा और आपको हम ले चलते हैं एक और बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। मन्ना डे और लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं, मस्ती भरा है शबाम।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई मन्ना डे और लता जी की आवाज में की मस्ती भरा है शबान। मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

मौसम है आशिकाना, लता जी की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था पकीसा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहेंगे तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। पुरानी नगमे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में एक मंजिल राही दो फिर प्यार मिले।

रहे आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर।

सिनेमाटोग्राफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में।

किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था अधिकार, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। मुकेश और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है संगम।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आशा जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए द नाइटिंगेल ऑफ एशिया, आशा जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और रेडियो SBS की सरिया मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुली रामलाल, दी यू फार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कैन इट ऑलटाइम, सर्व मैं नार वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस मेट द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: जाकर गढ़ लंका। हाँ, लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता, मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस गजोंग दूर सोनू निगम एनल के याचने के कम तो फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gitong Kileher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

0: दीजिए इनको, किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचनिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरि हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आई द फिल्म जॉगर्स पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

मैं भी सिर फिरा तू भी सिर फिरी गजोंग दो सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंग दो अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस सुमधुर कुमार सानू है बस आई द ऑल द फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान, खुशामदुर जावेद अली कोम तू जो मिला।

मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में। और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना, के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से भीगी भीगी सी है रातें।

फिल्म तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशाद और कुमार सानू एंड अलका याचने के कवामा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से, दिल की नजर से। और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्योंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनुज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।